0: 这他那个儿子和那大壮他家儿子在做，第这个一换然后为了的，他从亏是干的嘞，一下的，我打的个这些，你从海下的湖上的打的快爽，我还给地上打回来。大概是我还给地上打回来，伊的，嘿，一直系活稳的，嗯，那种大概化妆个地，你有啊？伊系的，你系个的地啊地。You would like on that. My other going to hit that needs to hide in the home. Honey, ho. Sick a hot a lay that you're going to eat. Huh. Not a quick was on good dear, niece, and you got the idea. A wood like on that, my other going to hit needs or hides in the home. Don't compare, guess that isn't on it all.The Madeleine chocolate, ni a good dua hode. Madeleine, good dia ni so nuts oil ni honina. A que nuts a la hoda in the neat a curso and a gill leque. A dina de hit a one on dino.
1: A cassetta, hoche, the gig a ho wa willena. A cass yet had a some will get her, you know, go here have a wish here, you know, a dehic a gulena.ये दिए कागज़ थे तो दिए खुदा ने तो दे बना दे एक वो एक्सन यानि सेमुआनी से यानि एक वो हाज़ वो कुन्ना गेट दे बना दे एक खुदा दे जा के सुने ने ये ताहो एक वो ने तो दे निज़ आ हाज़ वो मुदा इधर ना गेट दे ने तुम दुआ कर चाले से से तीस ना इधर ने तो कुछ नहीं सुना इधर नो दे जो ना तो एक Elan semua dia na, jadi dia elah dah. Nanti dia ni dia itu dia hotel ke, ekon hotel ke dia. Dia nanti dia ni dia itu awal sih. Itu ekon saya eh, ini ekon Deni Lina ni, Hozina ni, jom hotel ke tu, dia tu dia ni itu.丁子呢是给哪一段时间？哎，给的话好个心了。这的话，一旦给哪里，我给哪的呢？是他呢？是俺呢？还是还是给嘞呢？哎，那你那给嘞？还是应该给的？天呢？我还是可给俺呢？一旦，可先什么一旦呢？那得那是吃呢？因为这个呢，啥子哈？你阿姨那吃来了，你阿姨吃阿姨，你突然那等那里，伊的阿姨喜欢哪的，你的给真听侬说的，是给你吃侬说的，俺我是，伊来还是吃来，但是吃来，这我送到我那呢，俺们晚上这我送到我那我是，伊的这我你得先，这我你得还得你来。我的好，一旦是穿的太那个的呢，阿拉兄弟的噻，一来准备个，一来那是外头的，关键那个阿拉我总还有米了呢，还是什么的我那呢，我在家里，那那个我们什么给托在呢，他你在看后头在那在底下是该去个哪个地去替哪里？也看个哪个点上，他们打嘛，我们打我给那托打打去，这个腿托那托给这个现在给我给那托打上，也打那人我拿的，他一打是他什么空啥子给他，哎空搞个贴，一打空我去搞空给他呢，我穿个款哎款给他我拿的，哎可都送进来领得来给拿的，是二张空搞个贴。空个现在空户都要好钱了呢，哎，他把那呢空户钱的呢，也给也跟我打卡了，也来空打空。

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।